0: ആകാശവാണി സമയം 5 മണി.
1: ഹേ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹേ ആജ് കെ ഹിന്ദി പ്രസാരൺ മേ ആയി സുനത്തെ ഹേ വൈഷ്ണവി ബി കി വാർത്ത കൃത്രിം ബുദ്ധിമത ഭവിഷ്യ ഓർ സംഭാവനയെ.
2: അധികാംശ ലോക കൃത്രിം ബുദ്ധിമത്താ സെ പരിചിത് ഹെ ക്യൂങ്കി യഹ വിഭിന്ന ക്ഷേത്രോ മേ കൈ നവാചാരോ കോ ഗതി ദീ ഹെ. ചാറ്റ് ജിപിടി കെ ഉദയ കെ ബാദ് സെ യഹ ലോഗോ കി ചേതനാ മേ പ്രവേശ് കർ ചുക്കാ ഹെ. ഇസ്കി വ്യാപകതാ കോ പൂരി തരഹ സെ സമജ്നേ കെ ലിയേ ഹമേ യഹ സമജ്നാ ഹോഗാ കി എഐ കാ വ്യാപക നാം ഹെ ജോ കമ്പ്യൂട്ടറോ കി ഉൻ സർജനാത്മക കാര്യോ കോ കർനേ കി ക്ഷമതാ കോ ദർശാതാ ഹെ. ജൈസെ കി സോച്നാ സീഖ്നാ സമസ്യ സമാധാൻ കർനാ और निर्णय लेना जिनके लिए मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है. वर्तमान समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समय है. विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अत्याधुनिक तकनीक है जिसका प्रयोग आज शिक्षा स्वास्थ्य वाणिज्य मनोरंजन परिवहन आदि अनेक क्षेत्रों में हो रहा है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनें ही इस प्रकार से व्यवहार करती है जिस प्रकार से मानव अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है. इसका अर्थ यह है कि मशीनें जब समय और परिस्थिति इत्यादि के विश्लेषण के बाद कोई निर्णय लेती है तो मशीन की इस अवस्था को कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का सब डिविजन है और इसकी जड़ें पूरी तरह से कंप्यूटिंग सिस्टम पर आधारित है. इसका अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और मानव श्रम को कम कर सके. कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कई प्रकार की विशेषताएं होती है. नैरो एआई इसे किसी विशिष्ट कार्य या कार्यों के समूह को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है और यह अपनी प्रोग्राम की गई क्षमताओं से परे प्रदर्शन नहीं कर सकता है. अगला है जनरल एआई. उन्नत एआई जिनमें मानव बुद्धि की तरह ही कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में ज्ञान को समझने सीखने और लागू करने की क्षमता होती है. अगला है रिएक्टिव एआई. यह निर्णय केवल वर्तमान परिस्थितियों और प्राप्त जानकारियों के आधार पर लेता है और उन निर्णयों को प्रभावित करने के लिए पिछले अनुभवों का उपयोग नहीं करता है. अगला है सीमित मेमोरी वाली एआई. यह हाल के समय के डेटा का उपयोग करके तत्काल निर्णय ले सकती है और प्रतिक्रियाओं में सुधार कर सकती है जो आत्मतौर पर स्वायत्त वाहनों में देखा जाता है. अगला है आत्म जागरूक एआई. एक काल्पनिक एआई जिसमें मानव जैसी चेतना और आत्म जागरूकता होती है और जो दुनिया में अपने अस्तित्व और स्थिति को समझती है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर सबसे आम आशंकाओं में से एक शायद इसकी मनुष्य की जगह लेने या मानवीय प्रयासों को अप्रचलित कर देने की क्षमता है. दिलचस्प बात यह है कि नई तकनीक के आने के साथ ही वर्षों में ऐसा बार बार हुआ है. इसका एक उदाहरण लुटाइट आंदोलन है जिन्होंने कपड़ा मशीनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उनका मानना था कि ये मशीनें उनकी नौकरियां छीन लेगी. और एक समय ऐसा भी था जब लोगों को लगता था कि कंप्यूटर उनकी जगह ले लेंगे. एक समय तो लोग कारों को खतरनाक भी समझते थे और एक व्यक्ति आगे दौड़कर झंडा लहराते हुए दूसरे को आने वाले खतरे से आगाह करता था. असलियत यह है कि तकनीकी कार्य प्रवाह को बेहतर बनाती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अतीत की नई तकनीकों की तरह नए रोजगार सृजित करने की क्षमता रखती है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्ययन डेटा वैज्ञानिकों सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर्स जैसे कई लाभकारी पदों के लिए करियर का मार्ग प्रदर्शन करता है. हालांकि ज्यादातर लोग एआई का सेल्फ ड्राइविंग कारों और चैटबॉट जैसे लोकप्रिय

आविष्कारों से समझते हैं, लेकिन इसने स्वास्थ्य, सेवा, वित्त, शिक्षा, गेमिंग, खुतरा, ऊर्जा और कई अन्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। AI धीरे धीरे लोगों के प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है और स्वास्थ्य, सेवा, परिवहन, शिक्षा, वित्त, विपणन और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। ग्राहक सेवा, उत्पादन और वाहन चलाना जैसे कार्य मानव श्रमिकों से स्वचालित रूप से होने लगे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कई दोहराव वाले और खतरनाक कार्यों को स्वचालित कर लेती है जिन्हें पहले मनुष्य करते थे, और अब यह कार्य अधिक सटीकता और बेहतर गुणवत्ता के साथ किया जाता है। AI की मदद से खरीदारी का समय कम हो जाता है। यह बुद्धिमान उत्पाद अनुशंसाओं को शक्ति प्रदान करता है जो ई कॉमर्स में प्रत्येक खरीदार की ब्राउजिंग प्रोफाइल के अनुरूप वस्तुओं को सुझाव देते हैं। AI का उपयोग स्वास्थ्य सेवा उद्योग में रोगी के रिकॉर्ड की स्कैनिंग से कई अधिक हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप पाठ मूल्यांकन और सामग्री तैयार करके लाभकारी और व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव बनाने में मदद की है। अनुकूली शिक्षण प्लेटफॉर्म, वर्चुअल असिस्टेंट और स्वचालित ग्रेडिंग सीखने को अधिक आनंददायक और प्रभावी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोहराए जाने वाले प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करने से शिक्षकों को रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। ऑटोमोबाइल को जोखिम भरा मानने से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। वर्चुअल असिस्टेंट और रोबोटिक सहायकों जैसे व्यावसायिक मॉडलों में आई AI प्रगति इसका प्रमाण है। निराई, फसल की निगरानी, कटाई आदि के लिए सटीक कृषि रोबोट विकसित करने से रोबोटिक किसानों और कृषि प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के लिए अवसर खुलेंगे। ये रोबोट संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके टिकाऊ कृषि पद्धतियों में योगदान करते हैं। एक समय था जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को केवल विज्ञान कथाओं से ही जोड़ता जाता था। उसके बाद केवल गणितज्ञों और वैज्ञानिकों ने ही इस पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन अब यह दुनिया में ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिसकी अतीत में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बुद्धिमान कंप्यूटरों के अग्रदूतों में से एक है एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटरिंग के आधारभूत सिद्धांत की नींव रखने का श्रेय अक्सर उन्हें ही दिया जाता है। उन्होंने 1930 के दशक में एक ऐसी मशीन की अवधारणा प्रस्तावित की जो किसी भी अन्य मशीन का अनुकरण कर सकती थी। 1950 के दशक में प्रस्तावित उनका प्रसिद्ध ट्यूरिंग परीक्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक मौलिक योगदान था जिसने यह चुनौती दी कि क्या मशीनें मानव बुद्धि का नकल कर सकती हैं। हालांकि 1955 तक जॉन मैकादी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित नहीं किया था और इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाम दिया था। उन्होंने 1950 के दशक के अंत में लिस्प नामक एक प्रोग्रामिंग भाषा भी विकसित की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में महत्वपूर्ण बन गई। डीप लर्निंग का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ जब शोधकर्ताओं ने डीप लर्निंग एल्गोरिदम की शुरुआती संस्करण बनाना शुरू किया जो शुरू में अधिक गणना शक्ति की आवश्यकता से सीमित थे। फिर 1997 में एक शतरंज के खेल में AI ने जीत हासिल की। 1990 का दशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय अधिक डेटा सेट उपलब्ध थे और इंटरनेट प्रौद्योगिकियों ने मशीन लर्निंग के लिए डेटा सेट साझा करने की सुविधा प्रदान की। 2000 का दशक AI के लिए और भी अभूतपूर्व रहा। अधिक डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति के साथ मशीन लर्निंग तकनीक के फली फूली और वेब खोजों, ऑनलाइन विज्ञापनों और स्पैम फिल्टरिंग में सहायता प्रदान की जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और सिस्टम की कार्यकुशलता में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। 2010 के दशक में गहन शोधन यानी कि डीप लर्निंग में जबरदस्त उछाल आया जिसका मुख्य कारण बढ़ी हुई गणना क्षमता और बड़े डेटा की उपलब्धता थी। इस युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, स्वायत्त वाहन और छवि पहचान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। मशीन लर्निंग में सुधार के साथ साथ तर्क आधारित AI का महत्व कम होता गया। इस समय तक प्रणालियां मानव परिभाषित नियमों के बजाय डेटा से सांख्यिकीय निष्कर्ष निकालने पर केंद्रित हो गई। फिर 2020 के दशक में डीप लर्निंग ने

0: अपना थपदबा कायम किया और मानव जीवन के कई पहलुओं को नया रूप दिया। इससे भी बड़ा डेटा सेट ने डीप लर्निंग को मानव बुद्धि से परे कार्यों को करने में सक्षम बनाया, जैसे कि छवि पहचान। बात यही नहीं रुकी, डीप माइंड के अल्फा फोल्ड AI मॉडल ने प्रोटीन संरचनाओं पर प्रयोगों के विशाल डेटा सेट पर डीप लर्निंग का उपयोग करते हुए जीव विज्ञानियों द्वारा 50 से अधिक वर्षों से चली आ रही है एक समस्या का समाधान कर दिया। सैद्धांतिक अन्वेषण से लेकर व्यापक व्यावहारिक अनुप्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास 20वीं और 21वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी गाथाओं में से एक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निरंतर हो रही अभूतपूर्व खोजों की शक्ति है। यह उन उपलब्धियों से भी आगे निकल चुकी है जिनकी मानव कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसकी संभावित भविष्य कुछ इस प्रकार है। पहला है रोजगार सृजन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकती है और अर्थव्यवस्थाओं पर असर डाल सकती है। यह कई मौजूदा भूमिकाओं को स्वचालित करके रोजगार बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, साथ ही साथ नए उद्योगों को रूपांतरित और विकसित करके नई नौकरियां भी पैदा करेगी। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश नौकरियां AI के एकीकरण और उत्पादकता वृद्धि से लाभान्वित हो सकती है। मानव रचनात्मकता, सामाजिक भावनात्मक कौशल और जटिल प्रबंधन पर केंद्रित भूमिकाएं शायद अब परिवर्तित रहेगी। नई नौकरियां उभरेगी जैसे AI विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर और AI उत्पादों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइनर। अधिकांश नौकरियां बदल जाएगी क्योंकि स्वचालन के कारण आवश्यक कौशल का मिश्रण विज्ञान, गणित, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं की ओर अधिक असर होगा। इसका समाधान विस्थापन को कम करने और रोजगार सृजन की क्षमता को अधिकतम करने के लिए पुनर्प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन हेतु सक्रिय उपाय करना है। जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यावसायिक कार्यों में अधिक एकीकृत होती जाएगी, यह उद्योगों में व्यापक परिवर्तन लाएगी। दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादकता को बढ़ावा देगी और बेहतर डेटा विश्लेषण, गतिशील निर्णय लेने और व्यक्तिगत अनुशंसाओं के साथ मनुष्यों की सहायता करेगी। कार्यकुशलता और उत्पादकता में होने वाली वृद्धि से व्यापक प्रभाव पड़ेगा और नए व्यावसायिक और परिचालन मॉडल उभरेंगे, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वित्त, सैन्य और साइबर सुरक्षा, परिवहन, विज्ञापन आदि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव व्यापक ढंग से विद्यमान है। इसके अलावा संचार में AI की सहायता से अधिक सुधार आया है। AI शब्दों से परे मानवीय अर्थों को समझने और दिव्यांग जनों के लिए सुगम्यता बढ़ाने में सक्षम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभों को प्राप्त करने के साथ साथ नीति निर्माताओं और अप्रत्याशित परिमाणों के माध्यम से जोखिमों को बढ़ाने की इसकी क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही डिजिटल पीढ़ी के लिए भाषा सीखने में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बहुत फायदेमंद है।
1: अभी आप वैष्णवी बी की वार्ता सुन रहे थे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य और संभावनाएं। इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपति प्रासादे इस्ताना मेर्देका इत्यत्र औपचारिक राजकीय सम्माननं प्राप्तवान्। अद्य अपराह्णे प्रधानमन्त्री जकार्तायां इण्डोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री सविशेषं न्यगादीत् यत् वैश्विक आतंकवादस्य प्रतिकाराय उभे अपि राष्ट्रे संयुक्त कार्यसमूह तन्त्रस्य माध्यमेन अत्यन्तं निकटतया कार्यं कुरुतः।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे मेप्पाडी समीपस्थे कल्लाडी स्थानके अद्य वायनाड सुरंग मार्ग परियोजनायाः निर्माणस्थले संजातेन एकेन भीषणेन प्राणहारक पंकपातेन त्रयः जनाः मृत्युमुपगताः। वार्ताहरैः सह भाषमाणः मुख्यमंत्री वीडी सतीशनः इमां घटनाम् अत्यन्तं कष्टप्रदां दुर्भाग्यस्पदां च अवर्णयत्। तेन आरोपः कृतः यत् जनपद आपद प्रबंधन प्राधिकरणस्य समाह्वानानां पश्चादपि अधिकारिभिः दत्तानां निरन्तर निर्देशानां पालने गंभीरा उपेक्षा विहिता। तेन अग्रे ज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थले सहायोद्धार कार्यार्थं राष्ट्रिय आपद उद्धार बलस्य दलानि राज्यारक्षक बलं सहैव अग्निशमन उद्धार सेवा विभागः सद्यः नियोजिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य डुरंट कप टूर्नामेंट इत्यस्य जयचिह्नानाम् अनावरणम् अकरोत्। सहैव ध्वजं प्रदर्श्य तान् प्रेषितवती। सभां सम्बोधयन्ती असौ अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे नूतनानि दलानि डुरंट कप, प्रेसिडेंट कप, शिमला ट्रॉफी इत्येतेभ्यः जयचिह्नेभ्यः प्रतिस्पर्धां करिष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां हरितक्षेत्रस्य संवर्धनाय एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानम् अभिलक्ष्य दिल्ल्यां 70 लक्ष पादपानां वपनस्य कस्यचित् महाभियानस्य विधिवत् शुभारम्भं विहितवान्। अस्मिन् मंगलावसरे संबोधयन् श्रीशाहः प्रतिपादितवान् यत् अयं वपन संकल्पः दिल्ली पर्यावरणस्य पर्यावरणतन्त्रस्य च आमूलं परिवर्तनाय कश्चन अत्यन्तं महत्वपूर्णः अभिनव प्रयासो वर्तते। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालयेन जूएल ओरम इत्यनेन जनजातीय विकासाय ज्ञानस्य नवान्वेषणस्य साक्ष्याधारित नीति निर्माणस्य च यन्त्ररूपेण जनजातीय अनुसंधान संस्थानां सुदृढीकरणाय नूतन दृष्टिः उद्घाटिता वर्तते। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य 20,000+ कृषि उद्यमिनः 20,00,000 कृषकान् सशक्तीकर्तुं प्रगति परियोजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। निर्वाचनायोगेन बिहार गुजरात मध्यप्रदेश राज्यानां त्रिविधानसभासनानां उपनिर्वाचनेभ्यः अधिसूचना प्रख्यापिता। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैरन्त्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर गुजरात इत्येतयोः अन्येषु केषुचित् भागेषु तत्रैव हरियाणा पंजाब राजस्थान इत्येतेषां शेषभागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूला वर्तते। अद्य तटीय कर्नाटकस्य गुजरातस्य कोंकणस्य गोवा राज्यस्य मध्य महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञानेन विभागेन पूर्वानुमानितम्। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य रात्रौ नॉटिंघम इत्यस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यत्र पंच स्पर्धानां श्रृंखलायाः तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतीय दलं इंग्लैंड दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ता।

0: ഇനി കേൾക്കാം സമാചാര സന്ധ്യ. തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया. कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया. कहा, इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ. गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया. कहा, 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता. वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी. मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत

0: के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा समुद्री सुरक्षा व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई।

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।

0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले तीन वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में तीन लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे नौ मजदूरों को बचा लिया गया है। छह अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि चार अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से तीन लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India,